0: आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापान के निक्के 225 हिसेस इशारिये ने हफ्ते का इख्तिताम रिकॉर्ड बुलंद भाव के साथ किया। सरमायाकारों ने इस नुक्ता नज़र से ख़रीदारी के ऑर्डर्स दिए कि ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मयारी इशारिया जुमे को मुसलसल दूसरे कारोबारी दौरानिए में तेज़ी से बढ़कर 2.68% के इजाफे के साथ 63,339 पर बंद हुआ। मसनूई जहानत और सेमी कंडक्टर से मुतल्लिका हिस्सेस की कदर में नुमायां इजाफा देखा गया। एंटार्कटिक के हवाले से एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इजलास को समेटते हुए खित्ते के पुरअमन इस्तेमाल की खातिर आलमी तआवुन को फ़रोग देने के लिए अपनी कोशिशों का इआदा किया है। एंटार्कटिक मुआहदा मुशावरती इजलास जुमेरात को मगरबी जापान के शहर हिरोशिमा में ख़त्म हुआ। ये इजलास 11 मई को शुरू हुआ था और 32 साल बाद जापान में मुनक्किद हुआ है। इस 11 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में अमरीका, चीन, रूस और यूक्रेन समेत 44 ममालिक के 400 से ज़ायद सफारतकारों, मुहक्किकीन और दीगर माहरीन ने शिरकत की। बातचीत के दौरान शुरका ने इस बात की तस्दीक की कि वो एंटार्कटिका के पुरअमन इस्तेमाल के लिए बैन अल-अक़वामी तआवुन को आगे बढ़ाएंगे। शुरका ने माहौलियाती तगैर से निमटने के लिए कोशिशों को मरबूत करने पर भी इत्तफाक किया। उन्होंने शहनशाह पेंगुइन के तहफ्फुज को तरजीह देने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिन्हें बैन अल-अक़वामी यूनियन बराए तहफ्फुज माहौलियात की ख़तरे से 2-4 अनवा की सुर्ख फहरिस्त में मादूमियत के इम्कान के ज़ुमरे में शामिल किया गया है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि वो हालिया बरसों में एंटार्कटिका आने वाले सयाहों की बढ़ती हुई तादाद से निमटने की खातिर एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। जापान की एक बड़ी सुपरमार्केट चेन अपने सारफीन को तैयारशुदा खाना फरोख्त करने का तरीका बदल रही है, क्योंकि इसे प्लास्टिक कंटेनर्स की बढ़ती हुई कीमतों का सामना है। ईरान के तनाज़े के दौरान प्लास्टिक मवाद की कीमतें तकरीबन 20% बढ़ गई हैं। इतो, योकादो, टेम्पूरा और सूशी रोल्स जैसे खाने की उमूमी तैयार अशिया को अलग अलग कंटेनर्स में फ़रोख करती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए ये सारफीन से कहेगी कि वो अपनी मतलूबा मकदार मुंतखब करें और इसे एक ही कंटेनर में रखें। कंपनी का कहना है कि वो ताज़ा गोश्त की कुछ अकसाम के लिए पैकेजिंग पर प्लास्टिक के ढक्कनों का इस्तेमाल बंद करने का इरादा रखती है। इसके बजाय ये किचन रैप इस्तेमाल करेगी। तैयार नूडल्स की पैकिंग को बांधने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक फिल्म भी ख़त्म किए जाने का इम्कान है। एक और बड़ी खुर्दा कंपनी इयोन अपनी मसनूआत के लिए कंटेनर्स को सादा बनाने के तरीके तलाश कर रही है। इस तरह के इकदाम मजीद कंपनियों की तरफ से भी अपनाए जाने की उम्मीद है।
1: और आखिर में खास खबरों का खुलासा। एशिया बहरुल्काहिल इक्तसादी तआवुन के 21 रुकन ममालिक के वज़राए तिजारत ने चीन में अपने 2 रोज़ा इजलास का आगाज कर दिया है। आज़ाद और खुला तजारती निज़ाम और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे नए शोबों में तआवुन इसके अहम मौजूआत हैं। इत्तला के मुताबिक तेहरान वाशिंगटन की जानिब से एक नई अमन तजवीज़ पर गौर कर रहा है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने जुमेरात को कहा कि कुछ अच्छी अलामत सामने आई हैं। और जापान के निक्के 225 हिस्से इशारिये ने हफ्ते का इख्तिताम रिकॉर्ड बुलंद भाव के साथ किया। सरमायाकारों ने इस नज़रिए से ख़रीदारी के ऑर्डर दिए कि ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई।